0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: ए मावे सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्ट को मावे सीमा ना ला
4: अमिल्ल फैसा आंदा गें अमिल्ल हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमकी किहा मोय कमे ए मावे सुट्टा लाफिंग
5: दुम फाई आहार में गे हातुरे दुम फतु के इस्तेमाल कुरुम गे साबुं दिमावा सिही मसल तोगा आहार को हम मिलियन वुरे किना मीहु मारुवा कमा ताफास हिसाब तकुं दक्का फस नुजेही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमा हिंगा।
6: दिवे ही एफ एम, नुआ दिया एकम मेगाहर्ट्स।
7: मी अहमद आमिर।

0: मिहार गड़ी के कर गड़ी हाथर मिनट साढ़े तीन से कौन तो एक आप मेरी नो देखे मैं कर दी वे फिर मुझे गड़ी के करे मैं कहता नहीं तबे फ्रूंगी ऐहूं तेरी इंगे होन शो मिहार में तेरे कैस पैवरे का गुड़ी पास सलाम अलैकुम
1: वालेकुम
0: रीम को बहाल की ये को
1: लाने
0: में रंगल रंगल
1: फिहारे
0: दाने देखे ने लावा डुहाने फुटबॉल हम
1: बलो
0: टीम खबर
1: आदेश
0: फेने रंगल टीम दो मिस्तर ने मेरे करने मैं फिर न वरवाने दो नेता सपोर्ट करा थी मैं वाके
1: याने
0: मैं थी मत बी गो दो मी उन्हें पारे का विदान मैं फार नुकले नहीं कम से टीम दो एवस टीम का सपोर्ट है नुकला एक बालं दो तीसरा गोल गोत के तेंदे तेरे को एक बला दे वेने रु दो हेर को सपोर्ट करा टीम ने टीम दे हा शौगर का मनो दे वेने था दो बला का देन को मिस को तक बला ला फने माला फे के गोत कनु दाने मैं आती मैं दुर के के हूं हदन ते उले तैयार वानी दो कुरी मिला वाडो हाल मान था हिंगा लव खास कुरा मां कुंबे का हाल से कुरानी लवा
1: फादर ना नुस्ता टीम में मैंने वाला है
0: टीम में मैंने शे टीम में मैं दो आसलो
1: नो नो नो टीम में टीम आगे
0: टीम दो यार टीम में बनाए रही मैंने हम फुटबॉल है क्या नहीं
1: टीम में दो
0: बस मैंने थैंक यू वाला बढ़ाएंगे ऐ लव ज्यादा नहीं है रे बकेला
1: ना
0: ओके
2: ऐहूं तेरिंगे होबों।

0: वापस कीजिए आप। ये सच में मेरा टोस्टर है।
1: आई विल कॉल द कॉप्स।
0: मुझे बचा लो प्लीज।
2: पापा
0: तो मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मम्मी मम्मी कसम मैंने कुछ किया ही नहीं है।
3: मर्डर हुआ है, टोस्टर किलर।
0: तुम ऐसे कैसे किसी को कुछ भी नाम दे सकती हो?
3: रमाकांत
4: प्रेजेंट। मैडम
5: मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
2: डॉक्टर पढ़ ली गई। अभी मेरे को मेरा टोस्टर मांगता है।
0: टोस्टर मम्मा का है, नीचे।
5: मेरा टोस्टर भी नहीं लेके गया।
2: वो टोस्टर मांगता है मेरे को।
6: ಫಿಲ್ಮು ಎಮ್ಮೆ ಫಾಹಕ್ ಕೊಲವೆ ಕಮಕಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ಗೆ ಮೊಳು ಎಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾ ಕುಳೆ ರಮಕಾಂತಕಿ ಅಮಿಲ್ ಎದುಂ ಬೊಡು ದಾಹಿ ಅದಿ ಬೈಫಾರ್ ವರ ಫೂಯಿ ವಾಕಹಲ ಸಿಫತಕೆಂ ಹುರಿ ಮೀಹೆ ನಮ್ವೆಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎ ರೋಲ್ ಕುಳೆಫವಾ ಫುರಿಹಮಕಮುಂ ಬೆಲುನ್ ತೆರಿನ ಎ ಕೆರೆಕ್ಟರ್ಯಾ ಮೆದು ಶೌಗುರಿಕಂ ಉಫೆದೆ ಆದಾಗೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೆರೆಯಂ ಉಫೆದೆ ಬಿರುವಿರಿಕಮ ನುತನವಸ್ಕಂ ಏನಾಗೆ ಮೂಣುಮತಿಗೆ ಹರಕಾತಕುಂ ವರ ಫುರಿಹಮೆ ತಕ್ಕುವದೆ
7: अपनी मम्मा के बारे में दो वर्ड्स कहना चाहूंगा। मम्मा मम्मा
5: ग्लेन ट्रू टू हिज वर्ड। दो ही वर्ड्स बोले।
0: मैं भी डिसूजा आंटी के लिए कुछ बोलना चाहता हूं और दो वर्ड से ज्यादा। डिसूजा आंटी बेस्ट आंटी, मुझे एकदम अपना बेटे जैसे मानती थी, बल्कि बेटे से भी बढ़ के मानती थी। जाते जाते भी सिर्फ भलाई का काम किया। मरने से पहले मुझे बुलाया आंटी ने, मुझे बोली रमाकांत माय सन, आज से तुम्हारा रेंट 5,000 रुपए कम। नो यस
5: मेबी मेबी।
0: मैंने बोला आंटी अब
8: हेलो सर, आप एक दो दिन में टोस्टर ला सकते हैं क्या? रिफंड मैनेज हो जाएगा।
6: फिल्म रावाफ वनिवर तफातु दे बयका फुरतम बैग फेननी मजा हादसा तक एक कुलेवे सिचुएशनल कॉमेडी है। नम इस फिल्म के देवन बैग मुले फिल्म के मिसराब बदलवे मिहुं के फुराने नुरक्का वाफद सीरियस क्राइम थ्रिलर एक बदलवे मिफद बोड बदले फिल्म का गेनोम के डायरेक्टर नकाफवा वर बोड टेक्निकल रिस्क है। ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಹೆನ್ ಕಾಸ್ಟುಂ ಫರಾತು ಫಾಹಕೊಲ್ಲುವೆ ಮೊಳು ಹುಣರೆ ಫೆನಿಗೆಂದಿಯ ಎಗೊತುಂ ಅರ್ಚನಾ ಪುರಾಣ್ ಸಿಂಗ್ ಆಮುಕೊ ಕುಳೆ ಮಜಾ ರೋಲ್ ತಕ ಹಿಲಾಫ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆನ್ನನಿ ಬಿರುವೆರಿ ಅದಿ ಬಾಸ್ಮದು ಕೆರೆಕ್ಟರ್ ಕುಳೇತಂ ಅದಿ ಫರಾಹಾನ್ಗೆ ಹಾಸ ಫೆನಿಲುಮಕಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತುರು ಫೋರಿಯಕ್ ಗೆನುವಾದಿನ್ ಕಮೆ ಮಿ ಗೆತುರು ಸಾನಿಯಾ ಮಲೋತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆನಜಿ ಅದಿ ಸೀಮಾ ಪಹ್ವಾ ಫದ ಹುಣರುವೆರಿ ತರಿಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಫೆನಿಗೆಂದ ಫುರಿಹಮ ಎಕ್ಟಿಂಗೆ ಸಬುಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ಮಿ ತಫಾತು ದುನಿಯಂ ಇತುರು ಫುರಿಹಮ ಕಮೆ ಲಿಬಿಗೆಂದೆ।
9: क्या है?
0: मेरी वो टेलीकॉनेक्स वालों से बात हो गई है। तो 6 रुपए थे ना, तुम्हारे अगले महीने के बिल में क्रेडिट कर देंगे। ऐश करो।
10: दुनिया में पैसा है, पैसे का गेम है।

0: دي هي اف ام نوديها كم ميجا هرتز.
1: குளிவர் குளுந்தெரினா எ குளுந்தெரிங்கே வாஹகதா
2: இங்கே வாணே காமெக்கா தெங்கன புரகோங்க ராது கரவியா வர நகளு குரானா
3: போச்சஸ் ஹெம் போனாயரோ தேமவரோ உஃபாவே இட் மோட்டிவேட்ஸ் மீ
1: ஐலைன் குளுந்தெரினா மெது குரா உம்மீதுதா
4: ಯಾಗಂಡ ಕವಿಸಕ ಮುಬಾರ ಐನಿ ಮಿಹಾರ ಕುಳವಿದ ಏಗತೆರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್
5: ವರ ಫೋಕಸ್ ರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಕುಳೇಶೆ ಕುಳಂಗ ಎವ್ವನ ಹೋದ
1: ತಪಾತು ಗೇಮ್ ತ ಕಾಯಕು ಗೆನಸ್ತೆನಿ
6: ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೀಟ್
1: ಹೋಮ ದುಹುಗೆ ಮೆನ್ ದುರ್ಫಹು ದೇ ಚಹಾರು ರಿಪೀಟ್ ಅಂಗಾರ ದುಹುಗೆ ರೇ ದಿಹೆ ಚಹಾರು ಅದಿ ಬುಧ ದುಹುಗೆ ಮೆಂದಮು ಪಾರ್ ಚಹಾರು
7: ए मावे सुट्टा दाफिंग
8: आहार में सुट्टा दाफिंग
9: ए लिस्ट को मावे सीमना ला
10: अमिल्ला फैसा आंदे आगे अमिल्ला हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमकी की हाँ मोए कमे ए में मावे सुट्टा दाफिंग
1: दुम फाई आहार में गे हाथोरे दुम फतु के इस्तेमाल करूं गे साबुन दिमावा सिही मसल तो होगा आहार को हैं मिलियन वुरे की नमी हु मरुआ कमा ताफासी साब तकुन दक्का फस नुजे ही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमा हिंगा
0: दिवे ही एफ्म, दिवे ही नायकु नुम दिया एके मेगाहर्ट्स
11: अलिनूर